नाम से बोलो गजानन स्वामी की जय। थैंक यू पंडित जी फॉर योर ब्लेसिंग्स दिस इवनिंग, फॉर बीइंग हियर दिस इवनिंग, एंड ऑफ कोर्स योर एनलाइटनिंग वर्ड्स टू ऑल ऑफ अस। सो माय डियर डिवोटीज, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड। थैंक यू अगेन फॉर बीइंग हियर टू ऑल द पीपल हु आर ट्यून्ड इन द लॉकडाउन टू रेडियो एंड टीवी चैरिटी। वी वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अस दिस इवनिंग्स डिवोशन। वी प्रे द ब्लेसिंग्स विल रीच यू टू द मैनेजमेंट ऑफ रेडियो एंड टीवी चैरिटी। अगेन थैंक यू। So at this time, all is said and done, RT, subway, let us all stand together as we join.

0: Life a picture. Mom's a vector. Rahu Ketu, the director. Char.
1: राहु केतु कौन है?
0: अबे घड़ी की लोलक सुन कहानी और बजा ढोलक मट्ठे।

0: हाथी अमर हो जाएंगे।
1: पर देवों ने सोचा अगर दानव अमर हो जाएंगे तो कैसे चलेगी दुनिया, इसीलिए विष्णु जी बोले कुछ भी हो जाए अमृत तो हम देवों को ही पिलाएंगे।
2: वो तो ठीक है, पर जी राहु केतु कौन है?
3: अबे खड़ी के लोला, कहानी खत्म नहीं हुई है। बजा।

हेतु बन गए दोनों राहु केतु। राहु जालम ने माया के केतु के रस्ते रूहानी, एक टिकाए एक भटकाए दोनों मिलकर रचे कहानी, रचे कहानी, रचे कहानी, रच रच रच रच रचे कहानी।

बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की। कथा प्रेमियों, आज मैं आपको माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली शकट चौथ की बड़ी कल्याणकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही सहस्त्रों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए कथा

भक्तजनों, सकट माता की पूजा सभी महिलाएं बड़े प्रेम और भाव से करती हैं, क्योंकि इनकी पूजा करने से माँ अपने संतान के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं, साथ ही उनके सभी भौतिक सुख संपदा की कामना भी करती हैं और सभी सुखों का उपभोग करके उनकी संतान परम तत्व को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए।

कथा प्रेमियों, शकत चौथ जिसे संकष्टि चतुर्थी भी कहते हैं और गणेश चौथ के नाम से भी जानी जाती है, शकत चतुर्थी व्रत माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और कुशलता के लिए रखा जाता है, जिसमें गणेश भगवान और शकत माता की पूजा की जाती है और तिल गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत की कथा सुनी जाती है।

कथा प्रेमियों, वैसे तो सकट चौथ के व्रत की अनेकों दिव्य कहानियां हैं, लेकिन हर कथा का सार एक ही है। सकट माता का व्रत करने से पुत्रों के जीवन की रक्षा होती है। तो आइए इसी तरह से सकट माता की एक सत्य कथा आप

महिला प्रेमियों वो बुढ़िया लोभी के घरों में काम किया करती थी और उसका पोता गायों को लेकर जंगल में छोड़ देता था और जमींदारों के खेतों में मेहनत मजदूरी करता था, बदले में उसको कुछ धन प्राप्त होता था। इसी तरह से उन दोनों का गुजारा हो रहा था।

अपने बुढ़िया के पोते के मन में बुढ़िया के लिए नफरत के कांटे बो दिए। उसका पोता सोच रहा था कि कैसे पता लगाऊं कि मेरी दादी मेरे पीछे से पकवान बना के खाती है और मुझे रूखा सूखा खिलाकर गाय चराने के लिए भेजती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। माघ माह के कृष्ण पक्ष के सकट चौथ का दिन आता है। बुढ़िया सकट चौथ का व्रत

सब देख पोता मन में बड़ा दुखी होता है और दादी को बिना बताए ही घर छोड़ के चला जाता है। उधर उसकी दादी जब काम से निपट के देखती है तो शाम हो चुकी होती है। वो पूजा पाठ में लग जाती है, रात हो जाती है और चंद्रमा को अर्घ देके सकट माता की पूजा अर्चना करती है। काफी रात हो जाती है, अभी तक उसका पोता घर नहीं आया। इस बात की चिंता उसे सताने लगती है। वो सोच में पड़ जाती है कि मेरा पोता अभी तक घर क्यों नहीं आया।

कथा प्रेमियों, बुढ़िया की करुण पुकार सुनकर सकट माता का कोमल हृदय द्रवित हो जाता है। वो बुढ़िया के सपने में आती है और उसको सारी बात बताती है कि तेरा पोता क्यों चला गया, घर को छोड़कर वो पूर्व दिशा की ओर गया है और अभी अधिक दूर भी नहीं गया है। जाओ और उसे मना कर ले आओ और अपने पोते को मेरा प्रसाद खिलाकर सारी बातें बताना कि तुम तिलकुटा अपने लिए नहीं बल्कि सकट चौथ का व्रत करके सकट माता के लिए तुम

प्यार कर लो, कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो, अपने दिल का दामन भर लो।

जय गणपति भगवान की जय। हरि ओम। उपस्थित जी, एज वी ऑल रिसीव दर्शन, वी ऑल स्टैंड।

नमः उपस्थिति ऑल इन अटेंडेंस सबसे पहले एज वी ऑल सिट इन फ्रंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल डिवाइन दिव्य रूप अवाहित स्थापित पूजित देवी देवताभ्यो नमन करता हो वी पुट आवर हैंड्स एंड वी प्रोस्ट्रेट टू द ब्यूटीफुल मूर्तिज ऑफ आवर मंदिर दूसरे to the noble brahmins in attendance to young pandit governor performing pujan to pandit vishal maharaj ji for performing pujan fortunate we are tonight to have the illustrious pandit kemraj vyas ji and his wonderful dulahin in our midst we say naman koti koti pranam tisri my dear devotees a battery of young students, mothers that guarded

उपस्थिति लाइक दिस ओ देवास वन हु रीड्स दिस स्तोत्रम विल बी रेकॉर्ड बाय मी आई शैल फुलफिल हिज और हर विशेस इन द एंड आई विल बिस्टो हिम और हर विद सायुज्य मुक्ति और लिबरेशन दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ लिबरेशन शुनु द्वा मे वचसो रम्या माम गर्वे कुरुत प्रियः ओ बिलवेड डिवोटीज लिसन टू माय बिलवेड बेवलेंट एडवाइस डू नॉट बी प्राउड आई हैव क्रिएटेड ऑल ऑफ यू फॉर माय अंस ममे वांशो माय अंस ऑफ मी ए टाइनी पार्ट ऑफ मी सो यू आर डिपेंडेंट ऑन मी देयर इज नो डाउट अबाउट सच You have been created as a part of my divine creator. That is why when we started off

गणेश भगवान की जय। माय डियर डिवोटीज, लेट अस ऑल क्लास्प आवर हैंड्स, वी क्लोज आवर आईज फॉर अ मोमेंट एज आई चैंट द वर्स डेडिकेटेड टू द ग्लोरी ऑफ श्री गणपति गणेश भगवान।

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओ, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।

की जय। उपस्थिति ऑल इन अटेंडेंस, लेट अस ऑल स्टैंड रेवलियन काइंडली। कथा प्रेमी हरि ओम, एज वेव दैट ब्यूटीफुल लाइट, ओम जय।

गोस्वामी तुलसीदास जी सेज भरे भाग्य मानुष तनु पावा दैट इन ऑर्डर टू अटेन दैट लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन दिस शरीर दिस बॉडी वाज गिवन टू अस फॉर दैट पर्पस व्हाट वी डू विद इट इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन आवर कर्मज़.